ए नरक अन्न रुलिंग कुदि कुदि वेदां कैरी वेदे काफिरुंगे फौजे ए नरक एल्लवा कुम्मे फहरको एतांगे बंडेरिंग एवरेन्ना सुवालु कुरव्वानेते इंजारु कुरव्वा रसूलकु त्यबै मीहुंगे गाता वडे नुगन्नवा हिये।

मरहबा हुकुरुदुस मिमांग हुकुरुदुह के वगुत्तंग अदि कुरियंगोति तिवेफनंग उफावरी कमंगदे प्रोग्राम निमाला फाळगोंडो राजी वकेलान प्रोग्राम अडु असवीति एम हाफरात तक वेस शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.